0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: हरे कृष्णा कृष्णा।
2: सूचना संगीत र मनोरंजन को अटल साहिनो यो हो रेडियो साहिनो 99.8
3: साहिनो समय सूचक अहिले बिहानको 9 बज्यो।

0: ma, tu, akant o fan, aktivit ani karobar, sa cilej sanga. Easy life, easy, but now they heard a beat. Global Smart Plus, life ko pesma banki.
1: World Cup to World Cup.
0: Czar wersa ko sat, czar basos gaj warranty. Easy ko biskas, hare gol, hare kutsa. City TV le banau ghar atakka.
2: World Cup 2026 ko basar ma Easy TV le laeko sa. 3 plus 3 basa ko warranty. Sadae 36,000 sama ko cashback. Sajile 0% EMI ko subida. Nagita bhae kutsa. World Cup to World Cup. Easy TV, khel sangai, bharosa sangai.
3: Krishi Vikas Bank लिमिटेड का कर्जा ग्राहक ब्याज छूट संबंधी अत्यंत जरूरी सूचना इस कृषि विकास बैंक लिमिटेड विभिन्न मिति में कर्जा ली 2082 असार वसंत में विगत तीन वर्ष देखि भाखा नागे खराब कर्जा अपलेखित कर्जा र गैर बैंकिंग संपत्ति का रूप में इस बैंक ने धितो सकार गरेका कर्जा ग्राहक यही मिति 2083 असार वसंत भित्र बैंक बुझाउनु पर्ने सावा ब्याज र अन्य लेना रकम संपूर्ण चुक्ता करे में ब्याज रकम आकर्षक छूटको व्यवस्था गरिएकोले समयमै आफ्नो कर्जा चुक्ता गरी उक्त सुविधा लिनुहुन अनुरोध गर्दछौ। विस्तृत जानकारीको लागि यस ब्याङ्कका सम्बन्धित शाखा कार्यालयहरूमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ। कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेड, मुख्य कार्यालय रामशाह पथ, काठमाडौँ।

0: तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो साइनो 89.8 मेगाहर्ज़
1: सुर में गाना सीखे पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

हमें ऐसे भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता, हम भी कल्चर लॉन हैं, इतने सालों से हिम्मत जुटा रहे हम, आज आज बोल देते हैं पसंद है तुम हमें, तुम डिसाइड